0: हिस्सा बनाए रख पाएंगे, जानेंगे प्रोग्राम में। मिडल ईस्ट की जंग से हुई सप्लाई चेन प्रभावित, पाकिस्तान में फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, परेशान लोगों ने क्या कहा देखिए कार्यक्रम में। डेनमार्क ने रूस पर लगाए अपने हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स दागने के आरोप, तो वहीं लिथुआनिया में नेटो के फाइटर पायलट्स ने एयर स्पेस में घुसे एक ड्रोन को किया तबाह, कैसे हैं हालात देखिए बुलेटिन में।
1: कंपनीज डेफिनेटली हैव अ किल स्विच।
0: क्या एआई इंसानी काबू से हो सकता है बाहर, एंथ्रोपिक के को फाउंडर ने क्यों कहा एआई कंपनियों को कंपल्सरी किल स्विच की पड़ सकती है जरूरत, एआई की रफ्तार कम करने की मांग के बीच किस बात पर हो रही है चर्चा। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ पायल भुयान। आज बुलेटिन की शुरुआत मिडल ईस्ट के एक अहम शहर यमन से करेंगे, यमन जहां कब्जे की जंग और तेज हो गई है। यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच लड़ाई लगातार जारी है और दोनों ही तरफ से लोगों के घायल होने की खबरें भी हैं। यमन के आधिकारिक सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी अरब की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन का कहना है कि देश के दक्षिणी शहर पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 आम नागरिक घायल हुए हैं। यमन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत टैस में सऊदी नेतृत्व वाले एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत की खबर है। यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने यह फुटेज जारी की है और कहा है कि इसमें हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हो रहे हमले नजर आ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने कल यानी सोमवार को दावा किया कि सऊदी अरब ने पिछले 24 घंटों में यमन के अलग अलग इलाकों में 54 हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने भी हमले तेज किए। उन्होंने अपने हमले में सऊदी अरब के किंग खालिद एबेस को निशाना बनाया और हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते यमन की रेड सी के तट और बाबल मंदेब स्ट्रीट पर कब्जा कर लिया। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेका।
2: This has been a rapid advance by the Houthis capturing.
3: हूती विद्रोहियों ने रेड सी के तट पर मौजूद अहम इलाकों पर तेजी से कब्जा किया है और डर है कि इससे यमन में सिविल वॉर फिर से भड़क सकती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लड़ाई की वजह से 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अब भी ये साफ नहीं है कि हूती दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या फिर सरकार और उसके सहयोगी कोई बड़ा हमला करेंगे। लेकिन यमन में हिंसा से एनर्जी सप्लाई पर भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद हो जाने के बाद रेड सी सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट का एक अहम ऑप्शनल रास्ता बन गया है।
0: और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक नए सिरे से हुई शुरू हुई इस लड़ाई की वजह से 1,00,000 से ज्यादा लोग यमन के अंदर ही विस्थापित हुए हैं। पिछले हफ्ते से अब तक 2,000 से ज्यादा यमन के रिफ्यूजीज वहां चल रही लड़ाई से बचने के लिए रेड सी क्रॉस कर जिबूती पहुंच रहे हैं। इनमें आधे तो बच्चे ही हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर लड़ाई जारी रही तो हजारों और लोग यहां आ सकते हैं। रिफ्यूजीज के अचानक इतने बड़े पैमाने पर आने से अधिकारी भी हैरान हैं। और इस दौरान अमेरिका और ईरान की वजह से कई खाड़ी देश की जो मुश्किल है वो बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जल्द से जल्द शांति समझौता करना चाहता है। आलिया अल खालिद कुवैत की नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य है, वो बता रही हैं कि उनके देश पर इसका क्या असर पड़ रहा है।
4: कुवैत की एयर डिफेंस ने कई बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोका है। इनमें से कुछ हमलों का असर एनर्जी फैसिलिटीज पर पड़ा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ऑयल फील्ड्स में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और वहां काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को चोटें भी आईं। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से कुवैत में मुख्य शिपिंग रूट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे ऑयल एक्सपोर्ट में देरी हुई है और सरकारी रेवेन्यू में भी कमी आई है। इसीलिए कुवैत बजट में बढ़ते हुए घाटे और मैसिव रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सामना कर रहा है। अब इससे निपटने के लिए कुवैत की सरकार ने आपातकालीन आदेश जारी किए हैं, जिनसे उसे अपने फ्यूचर जनरेशन फंड से 10% तक उधार लेने की इजाजत मिल गई है।
0: और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन और फ्रेट चार्जेस भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। वहां बीते 10 दिनों से लगातार फ्यूल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं और जनता इससे परेशान है। ऐसे में बीबीसी संवाददाता उमर दराज दांग्याना ने पेट्रोल पंप्स पर मौजूद लोगों से बात की।
5: पाकिस्तान में हुकूमत ने एक मरतबा फिर फ्यूल की प्राइसेस को बढ़ा दिया है। पिछले 8 से 10 दिनों में ये प्राइसेस मुसलसल बढ़ती रही हैं और अब ये 10 दिनों का जो इजाफा है ये तकरीबन 30 से 35

0: रुपए बनता है और पेट्रोल जो है वो 380 रुपए लीटर और हाई स्पीड डीजल 400 से भी ज्यादा 409 रुपए प्री लीटर मिल रहा है। ये प्राइसेस रोजाना की बुनियाद के ऊपर रिवाइज होती हैं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा प्राइस हाइक आया है इसके बाद जो पब्लिक है उसने काफी एंग्रीली रिएक्ट किया है इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने उनको थोड़ी रिलीफ देने के लिए एक सब्सिडी अनाउंस की है जिसमें गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो मोटर बाइक्स हैं और जो 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो सब्सिडी ले सकेंगे, उनको फी लीटर 100 रुपया सब्सिडी मिलेगी। लेकिन उसका जो तरीकाकार है वो इस तरह का बनाया गया है कि वो एक ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर को कोड आएगा, वो यहाँ पर दिखाएंगे, फिर वो सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये सब्सिडी लेने की कोशिश की लेकिन उनके लिए ये प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझ नहीं आया इसलिए वो नहीं ले सके। कुछ लोगों ने इससे इस्तेफादा भी किया लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि प्राइसेस जो बड़ी हैं ये काफी ज्यादा हैं।
1: मैं भी ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, तो मैंने कहा चलो मैं अप्लाई कर लेता हूँ, पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन मैंने देखा कि मैसेज आ गया तो मैं फौरन यहाँ पे आ गया, पेट्रोल भी डलवा दिया मैंने।
2: हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी देख लें, वहाँ भी फ्यूल प्राइसेस ज्यादा हुए हैं लेकिन वहाँ इतने ज्यादा नहीं है, क्यों? वहाँ पे टैक्सेस इतने नहीं है, वहाँ पे डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी नहीं है जितना हमारे यहाँ पे, ये मसले हैं तो हम एक मसले को टैकल कर ही नहीं रहे।
3: रिसेंटली मैंने पेट्रोल डॉलर में हैरान रह गया हूँ, मुझे आप समझ लें कि वो तीन गुना प्राइस होगी। आप देखें 1000 रुपए का सिर्फ 2.61 लीटर, तो आप सोचिए हम कहाँ पे जाएं, बच्चे स्कूल मामलात, अब हमारी तनख्वाह या मामलात तो वही 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अब हमारे जो बजट हो गए 3-3 लाख पे चले गए, कहाँ से लाएं?
4: हमारी इतनी आमदनी नहीं है जितने पेट्रोल महंगा है, तो 25,000 हमारी सैलरी है उधर 8 घंटे ड्यूटी की, तो ये 500 के करीब 400 के करीब पेट्रोल है, तो आने जाने में डेली का तो 1 लीटर पेट्रोल लगता है, तो अंदाजन कर ले 12,000 का पेट्रोल बन जाता है।
0: साथ ही पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो की अपोजिशन पार्टी है वो ये काफी दिनों से सड़कों के ऊपर है और प्रोटेस्ट कर रही है कि उसकी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जो उसने फ्यूल प्राइसेस के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगा रखी है, जो टैक्स है, उसको खत्म करे और इससे प्राइसेस खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर है तो उसको वो भी देखना होगा, इसलिए गवर्नमेंट अभी नेगोशिएट कर रही है। अब देखना ये है कि क्या इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है या फिर आने वाले दिनों में ये प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको बढ़ाने की जो वजह बताई है वो ये है कि एक सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है और दूसरा फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए हैं।
5: बात अब रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर आसपास के देशों में भी महसूस किया जा रहा है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि नेटो के फाइटर जेट्स ने कल रात उसके एयर स्पेस में घुसकर एक ड्रोन को मार गिराया। अधिकारियों का कहना है कि इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि ड्रोन पड़ोसी देश बेलारूस से मंगलवार को आधी रात के बाद दक्षिणी लिथुआनिया के एयर स्पेस में घुसा और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर क्वांस में आ गया। लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके सैन्य बलों और नेटो के पायलट्स जो इटालियन हैं उन्होंने ड्रोन की घुसपैठ पर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ड्रोन किसका था यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानेस नौसेडा ने कहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक हो रहा है और ऐसे में इस तरह की तैयारी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नेटो के सहयोगियों के साथ मिलकर लिथुआनिया अपनी एयर स्पेस की रक्षा करेगा। रूस ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। एक दूसरी घटना में डेनमार्क का कहना है कि सोमवार को एक रूसी जहाज ने उसके हेलीकॉप्टर के पास फ्लेयर्स दागे। हेलीकॉप्टर फ्लेयर्स से बाल बाल बचा। हेलीकॉप्टर जहाज की तस्वीरें लेने के मिशन पर था। इस घटना के बाद डेनमार्क में मौजूद रूसी राजदूत को तलब किया गया। रूस का दावा है कि हेलीकॉप्टर ने कुछ ऐसा किया होगा जिसे रूस उकसाने वाला काम बताता है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच रात भर हमले होते रहे। आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ड्रोन्स ने 2 पेट्रोल स्टेशन्स को निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेनी पोर्ट पर सैन्य सामान ले जा रही एक कार्गो शिप पर एक फेरी को निशाना बनाया। रूस में अधिकारियों ने कहा है कि उसके दक्षिणी शहर टैगनरोग पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले हुए हैं। यूक्रेन में चल रही जंग अब अपने 5वें साल में है। इसमें अब यूरोपियन यूनियन और नेटो के देशों के एयर स्पेस में ड्रोन्स के घुसने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। पोलैंड के सैन्य बलों ने कहा है कि उन्होंने मिलिट्री एविएशन ऑपरेशंस शुरू किया है जिसका मकसद है एहतियात के तौर पर अपने एयर स्पेस को सिक्योर करना। तो इस जंग से यूक्रेन के पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ रहा है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल।

0: Sometimes it's just the spillover.
1: जब यूरोप के आसपास हो रहे संघर्ष के दौरान आसमान में मिसाइल और ड्रोन्स होते हैं तो उसका असर यूरोप पर भी पड़ता है. कभी वो ड्रोन्स या मिसाइलें गलत दिशा में चली जाती हैं, कंट्रोल खो बैठती हैं, कभी जानबूझकर तो कभी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की वजह से एयर स्पेस में घुस जाती हैं. कई बार तो ड्रोन्स तब तक उड़ते रहते हैं जब तक उन्हें गिराया नहीं जाता और वो नेटो के इलाके में घुस जाते हैं. तो ये जंग का एक तरह से फैल जाना है, लेकिन इसी दौरान रूस भी जानबूझकर नेटो की ताकत परखने के लिए ड्रोन्स को नेटो के इलाकों में छोड़ता है. और ये रूस की सोची समझी रणनीति है, फिर चाहे वो आसमान हो या फिर समंदर के अंदर मौजूद केबल्स के जरिए या फिर साइबर स्पेस ही क्यों ना हो.
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो बहस छिड़ी है वो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है. हाल ही में एआई की दो लीडिंग कंपनीज एंथ्रोपिक और ओपन एआई के चीफ्स ने इस टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरों के बारे में वार्न किया है, जिसके बाद एशिया, यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स में टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में गिरावट नजर आई है. वहीं अपने ही देश की टॉप एआई फर्म्स के चीफ्स को सेफ्टी वार्निंग को खारिज करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसे डर फैलाने वाली एक कोशिश बताया है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसे लेकर कई पोस्ट किए हैं. उन्होंने खुद को होक्स बस्टर कहते हुए लिखा है कि एआई दुनिया को तबाह कर देगी या कब्जा कर लेगी या हमें खत्म कर देगी. ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं. उन्होंने एआई की रफ्तार धीमी करने की मांग करने वाली एक इंडस्ट्री लीडर्स की जो एक आप वो देखेंगे उसमें एक सवाल भी उन्होंने उठाया कि ये रेगुलेशन अगर लागू हुए तो उनकी कंपनियों को बर्बाद कर सकती है. वो ऐसे रेगुलेशंस की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं. और उन्होंने उसके बाद भी अगर आप देखें तो कई सारे ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने आगे चीन का भी हवाला दिया और लिखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनाउंस किया है कि चीन एआई की राह में रोड़ा नहीं बनेगा. ट्रंप ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमेडोई पर निशाना साधा और लिखा कि ट्रंप प्रशासन ने उन जैसे लोगों को गलत करने से रोका है. इसे कॉन्स्पिरेसी बताते हुए उन्होंने कहा कि इन अफवाहों से बस चीन खुश है. अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एंथ्रोपिक को फरवरी के महीने में एंथ्रोपिक को एक सप्लाई चेन रिस्क बताया था क्योंकि एंथ्रोपिक ने सेना को अपने एआई मॉडल्स का इस्तेमाल सर्विलेंस या ऑटोनोमस वेपन्स जैसी चीजों के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एंथ्रोपिक ने अदालत का रुख किया और फिर अगस्त में एक अमेरिकी कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी थी. अब दुनिया की टॉप एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक के को फाउंडर जैक क्लार्क ने बीबीसी से कहा है कि एआई कंपनियों को एक किल स्विच रखना जरूरी हो सकता है ताकि टेक्नोलॉजी कंट्रोल से बाहर ना हो. देखिए बीबीसी के इकोनॉमिक एडिटर फैसल इस्लाम की रिपोर्ट.
3: We've made for complex work.
4: AI की बड़ी कंपनी Anthropic ने AI की रफ्तार धीमी करने की मांग की है. कंपनी के एक विसल ब्लोअर और सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी की पूरी इंसानियत को खत्म कर देने की संभावना 10% या उससे भी ज्यादा है. कंपनी के बॉस और को फाउंडर जैक क्लार्क ने सिलिकॉन वैली से बीबीसी के साथ खास बातचीत की. आपने और आपकी इंडस्ट्री ने ऐसा होने कैसे दिया?
5: हुआ ये है कि अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है और जिन खतरों को सिर्फ पहले किताबी माना जाता था अब हमें उनके शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं.
4: आपके हिसाब से यहाँ असल खतरा क्या है? क्या एआई टूल्स इंटरनेट पर कब्जा कर सकते हैं, पावर स्टेशंस बंद कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर सकते हैं? अब ये बताने का वक्त है कि इसका मतलब क्या है.
5: असल खतरा यह है कि मानिए अगर कोई सिस्टम इस प्लैनेट के सबसे होशियार इंसान से भी 100 गुना ज्यादा होशियार हो तो आपको कितना भरोसा है कि आप उसके खतरे से निपट पाएंगे? मुझे लगता है कि उससे डील करके सुरक्षित बाहर निकल पाने की संभावना काफी कम है. इसलिए बड़े स्तर पर एआई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना जरूरी है और इंसानों से ज्यादा होशियार चीजें बहुत बहुत बहुत खतरनाक हो सकती हैं.
4: इससे एक तरह के किल स्विच का सवाल उठता है. क्या आपके पास ऐसा कोई स्विच है? क्या आप इसे रोक सकते हैं?
5: मुझे लगता है कि ज्यादातर एआई लैब्स के पास सिस्टम को बंद करने के अलग अलग तरीके हैं और हाँ, हमारे पास भी इसके लिए सिस्टम मौजूद है, लेकिन इस तरह के मुद्दों को बड़ी पॉलिसी डिस्कशन का हिस्सा बनाना जरूरी है. क्या कंपनियों के लिए ये जरूरी किया जाना चाहिए कि उनके पास किल स्विच हो और क्या किसी थर्ड पार्टी से ये जांच करवाई जा सकती है कि वो किल स्विच सच में काम करता है और आगे चलकर इस पर नियम भी बनाए जा सकते हैं?
4: लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है.
6: It's not too late.
5: अभी बहुत देर नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि हम अभी वैसे डेंजर जोन में हैं, लेकिन हम उसके इतने करीब हैं कि हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और राष्ट्रीय

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application which lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat hai.

0: ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ
1: हाल ही में नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स समिट खत्म हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल से भी ज्यादा समय के बाद भारत आए थे और 2 दिनों का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। समिट के बाद नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी देशों की सहमति बनी, हालांकि इसमें कोई चौंकाने वाला फैसला तो नहीं था। ज्यादातर बातें एक तरफा ट्रेड पाबंदियों और अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित थी, लेकिन ईरान और यूएई जैसे देश जिनके बीच हाल ही में तनाव की खबरें आई थी, उनके नेताओं का एक मंच पर मिलना और सहमति बनना अपने में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेकिन असली कहानी तो इसके पीछे है। चीन में मीडिया पूरी तरह से वहां की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में काम करती है। ऐसे में चीनी मीडिया क्या लिख रही है उससे बीजिंग की असली सोच और प्राथमिकताओं का पता चलता है। चीन के बड़े बड़े अखबारों और चैनल्स ने इस दौरे और भारत चीन रिश्तों पर क्या कहा, जानेंगे इंडियन एक्सप्रेस की डिप्टी कॉपी एडिटर ऋषा सिंह की रिपोर्ट से। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं चाइना डेली की, जो चीन का प्रमुख अंग्रेजी अखबार है। इसके एक संपादकीय में 2026 में ब्रिक्स सहयोग की 20वीं वर्षगांठ पर लिखा गया, पिछले 2 दशकों में ब्रिक्स सहयोग तंत्र उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग का दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंच बन गया है। साथ ही अमेरिका का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधते हुए लिखा, दुनिया में जब एक तरफा नीतियां और पावर पॉलिटिक्स बढ़ रही हैं, जिससे बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दबाव में आ रही है, तब ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ज्यादा न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए आगे आना होगा। चाइना डेली के मुताबिक अब ब्रिक्स का तीसरा गोल्डन डेकेड शुरू हो रहा है, जिसकी कमान 2027 से चीन के हाथों में होगी। अब बात करते हैं ग्लोबल टाइम्स की, जो एक टैबलॉइड अखबार है। इसके एक संपादकीय ने चीन को एंकर ऑफ ब्रिक्स कोऑपरेशन यानी ब्रिक्स सहयोग का मुख्य आधार बताया और लिखा, चीन हमेशा से ब्रिक्स को अधिक ठोस, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावशाली बनाने वाली एक प्रमुख ताकत रहा है। नाम और वास्तविकता दोनों में चीन ब्रिक्स का एंकर बनने का पूरी तरह हकदार है। अखबार ने शी जिनपिंग का महिमामंडन करते हुए ब्रिक्स प्लस मॉडल सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करने का श्रेय शी जिनपिंग को दिया। एक अन्य लेख में भारत चीन संबंधों और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक का जिक्र करते हुए लिखा, 2024 में कजान बैठक और 2025 में तियानजिन बैठक के बाद ये लगातार तीसरा साल है जब चीनी और भारतीय नेता मिले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों के लगातार स्थिर होने को रेखांकित करता है। इसमें एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से लिखा गया, कजान मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी, तियानजिन ने रिश्तों को पटरी पर लाया और अब नई दिल्ली सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के नए दौर की शुरुआत की है।
0: बिल्कुल, ये शुरुआत की थी, बट दूजे पास कैनेडा ते अमेरिका की शुरुआत जी खराब हो गई है, ते लड़ाई वास्ते तैयार पर तैयार नहीं चल रही लड़ाई, बट एक जड़ी होर लड़ाई का रिजल्ट कल पहुंचे, जिदे च तुहानू पता है अल्बर्टा दे अंदर कैलगरी शो जड़ी राइडिंग है, जिदे च रबेका शूल जड़े ने पहला एमएलए हुंदे सीगे, कैबिनेट दे मिनिस्टर भी रहे ने, जनवरी 2 उन्होंने रिजाइन करता सी इस जगह तो, ते हुण फाइनली जड़ा वो सीट तो माइक डेरी जेडे की पार्टी ने चूज किए मिस्टर डेरी जेडे आनगे माइक डेरी, बट वो 6879 वोट्स लै चुके ने, जबकि अनऑफिशियल रिजल्ट है, हो सकता भी थोड़े बहुत उपर थले हो जान, ते एनडीपी दे कैंडिडेट कायल कैंपबेल ने जेड़ा ए इलेक्शन जेड़ा वो जीत लिया। ते पिछले लंबे समय तो यह लड़ाई जेड़ी चली आ रही सी भी एनडीपी दे जेड़े रिजल्ट जेड़े ने काफी डिफरेंट डिफरेंट बोलते सी, बट फाइनली ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਨੈਨਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਦ ਨੈਨਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨਿਲ ਸਮਿਥ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 602 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲਿਬਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ 7461